0: सबको तंत्र र मंत्र जंत्र जति हो मेरे सब हाथ में रोज रोज खुआउनु पर्छ कर्म अनुसार थालमा कतै पातमा
1: धरती भई मार्गमा म हिँडथे एक दिन हरिद्वारमा एक विधुवा बसेर पीडामा रुन्थिने बेचारी उहाँ सामुमा गएर मैले सोधे भयो के भनी
2: खाऊ भनेर झन्टन गयो ठुलो लडाई भयो दुबैयुक्त हुँदै शुक्र भित्रमा कोही नदीमा पर्यो कोही ब्राह्मण कोही सर्प परदा जुवादेका नामके माथि भइकन सरा कहाँ गए खेलिरहेकै थिए
1: सीमा घर हो प्रहाल घर हो दाहालकी छोरी म वर्ष महापति मरि गए मेरो विपद के कहुकी मथि विवाह गरी दिए बुढा कुरुपी पना मेरै वर्ष महा

नानो दैनो जंजु वंशी ने राजे का नानो दैनो नानो दैनो ए कृष्ण नानो दैनो जंजु वंशी ने राजे का नानो दैनो

हाईटेक नर्सरीमा उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी र विभिन्न बिरूवाहरूको भरपर्दो गन्तव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहाँ लोरसल्ला, टिमुर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुवा बेद, जापानीज नस्पति

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो 7 मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 4 तारीख आषाढ 20 गते शनिबार चौथी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी साक्षण कल्पय भरे श्री ऐमा दशरथ जी का शरीर प्रख्याति नै लग भरे शत्रु राघव का शरी क्षय राजा नौश कैसरी दौलतले परिपूर्ण होस पवन जै नै परेका घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समा

धर्म कुमार कैसर्य श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवश सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का।

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छिट बोलिए श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।